0: 没问题。
1: 巴特拉他什么时候去变啊？现在他也是有些犹豫。巴特拉这边叫暂停了。
2: Time out, Batra.
3: सही खेल रहे हो, डिसीजन सही था। कुछ जब केवल शॉट दे रहे हैं, इसको ट्राई करो कि ये वाला लंबा नहीं बनना, अगला वाला अगर शॉट दे देते हो, जो पुश आए, दो लंबा खेलो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेप करके खेलना पड़ेगा, दो लंबा खेलना पड़ेगा। तेरी छोटे के लिए वो रेडी है, थोड़ा सा। या तो लंबा आता ओपन भी कर सकते हो, तो चेंज अगर करना कर सकते हो। बट ये अच्छा है जो आप कर रहे हो, लंबा अच्छा है, पर जब वो मारते हैं तो कहीं नहीं खोलना है, यहीं से ही मार दो। फ्लैट मारना या डॉक्टर से मारना, कुछ मारना, यहीं से ही मारना। और अपना शरीर सिंपल से डाल शॉट डालना, वो ऐसा देगा लंबा या नहीं, प्लेन से डाल दें। अगर प्लेन से डालना तो सीधा डालना, और लंबा सही खेल, डिसीजन बस देखो, ये वाला बॉल भी खोलना है, ये वाला बॉल भी खोलना, पूरी नहीं मारना, सही खेल, लंबा लंबा खेलते रहो, और इधर ही रहो, स्टेबल रहो, इधर आ जाएगा, इधर स्टेबल रहो, ऐसे मारो।
1: 暂停回来，继续回到比赛当中。哦呦，可惜了。说回来，这下呢，这局是丢了两个，没关系。